0: जी हाँ बिल्कुल, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पर, कोई तुमसा नहीं। हैप्पी हैप्पी संडे, रेडियो के जगह साथ है, मैं हूँ आपका साथ आरजे क्रिश, और हमारे साथ आप सबकी प्यारी दुलारी, द वेरी गॉर्जियस, द वेरी ब्यूटीफुल आरजे जी भी। हाउ आर यू, हाउ इज योर वीक?
1: आई एम रियली गुड क्रिशी, एंड वीक भी इस बार काफी अच्छा गया आई शुड से, एंड काफी ज्यादा बिजी रहने लगा है हम सबका लाइफ, स्पेशली क्रिशी आपका और हमारा, क्योंकि दिवाली जो है फुल फ्लेज में शुरू हो चुका है। लास्ट वीकेंड हम थे स्प्रिंग्स में, हेमना स्प्रिंग्स का वेरी फर्स्ट दिवाली जो काफी काफी काफी सक्सेसफुल गया। सो टू द एंटायर टीम ऑफ हेमना सिंग्स, रवि जी, नीता जी एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजर्स को हम कंग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं फॉर अ वेरी सक्सेसफुल दिवाली। बाकी आप सब लोग कैसे हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल, ये दिवाली की सक्सेस के, वेल द क्रेडिट गोज टू द ऑर्गेनाइजर्स, जहाँ पर इन लोगों की मंथ्स की कड़ी मेहनत के बाद ये जो जहाँ पर जिस तरह से स्टेज पे परफॉर्म करी गया, प्रेजेंट करी गया, इनके साथ साथ जितने जो फूड स्टॉल्स थे, बाकी सब हेड्स ऑफ टू एवरीवन। पर इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जितनी जो दिवालीज आ रहे हैं, गरबा इवेंट्स जो भी आ रहे हैं, आप सभी को हम पहले से ही ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहेंगे। वैसे कल देखा जाए तो कल गरबा 2026 यानी जो गरबा रोल्स होता है, ये रोलस्टन में था। जहां तक हम पर्सनली तो वहां नहीं गए थे, पर आरजे दिशा वाज द सिंगर इन द एमसी देयर। तो अभी जो फिलहाल के लिए जो खबर आ रही है, कुछ हद तक अच्छी खबर है, तो जब दिशा से मिलेंगे तो और पता चलेगा ना कैसा
1: गया। आई शुड से कि दिशा ने धमाका क्रिएट कर दिया है, हमने ये सुना है, सिर्फ काफी सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं उनके स्टोरीज में दिशा का पोस्ट है कि बहुत अच्छा दिशा ने गाना गाया, और अभी भी हम कुछ लोगों से मिले थे जस्ट ऑडिशन, और वो लोग भी बोल रहे थे कि दिशा आपने काफी अच्छा गाया, सो कंग्रेचुलेशंस एंड वी आर सुपर प्राउड दैट यू आर पार्ट ऑफ द केजे टीम।
0: जी बिल्कुल, चले गीतों की जो बारिश है इसे और भी करते हैं। जितने लोग हमारे साथ उधर फेसबुक के माध्यम से बहुत ही जल्द जुड़ने वाले हैं, और जितने लोग अभी फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं, आप सभी का हम स्वागत इस्तकबाल करना चाहते हैं, खासतौर पर से उधर क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन में, जहाँ पर नीरज जी आप और आपकी टीम हमारे साथ जुड़े हुए। लीजिए इस गीत में हम सभी को याद कर लेते हैं। यू लिस्टिंग टू रेडियो के जलो ओनली ऑन
1: प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: with me. Welcome back to Radio KJ Local. You're listening to Your Krish on Plains Media 96.9.
1: जी हाँ बिल्कुल. Your Krish. Oh wow wow wow. जी हाँ बिल्कुल. आज अगर हम जितने लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं Facebook Live के माध्यम से, अगर आप देखना हमें चाहते हैं रूबरू, तो आप हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं. जैसे हम बोल रहे थे कि अभी सारे जो इवेंट्स आ रहे हैं, खासतौर पर से जो दिवाली इवेंट्स आ रहे हैं, गाइज दिस इज अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम. हम हमेशा घर पे बैठ के ये सोचते हैं, जब लोग मंडे को काम पे जाते हैं, वीकेंड कैसे गया, कुछ नहीं बस ऐसे यार कुछ तो हो रहा है, कम सीट. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन के लिए वहां रहे, एटलीस्ट हॉप इन दे आपके शहर में. विच जीबी वी आर गोइंग टू सम अदर सिटीज फॉर दिवाली टू.
0: जी वी आर ट्रैवलिंग अक्रॉस न्यूजीलैंड दिस ईयर विद दिवाली.
1: वन डाउन
0: वन डाउन मतलब हाँ हो गया. हाँ यार अंग्रेजी थोड़ा कम समझ आता है हमें. आप हिंदुस्तानी में बोलिए तो
1: एक गिर गया.
0: सो हाँ हेमनार हो गया है. हम ट्रैवल करने वाले हैं वायुकु के लिए, हम ट्रैवल करने वाले हैं इनवर कारगिल के लिए और टोरंगा दिवाली के लिए. साथ ही साथ क्राइस्टचर्च दिवाली में हम आपसे मिलेंगे, सनातन महिला मंडल के फीजी दिवाली में हम आपसे मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स आईएससीसी क्राइस्टचर्च दिवाली एंड सेल्विन दिवाली में भी हम आपसे मिलेंगे.
1: निट्स मार्टिन जी, सीताराम जी, निट्स आर यू स्टिल इन फीजी, आर यू बैक? और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वी हैव अ ड्रिंक, यू नो आप काफी देर से बात कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड हैव अ ड्रिंक एंड यू नो गेट योर सिस्टम मोर हाइड्रेटेड, क्योंकि वी नीड टू. आज जीबी जी के
0: हमारी बोलती बंद कर रही है.
1: नो नो नो, जीबी जी की तरफ से आज हमें गाना सुनेंगे. जीबी जी, वी नीड यू टू सिंग टुनाइट.
0: हम गाना
1: आप हमें कल बता रहे थे.
0: अच्छा, आप ये सोचते हो कि जब से दिशा ने रेडियो केजे लोकल ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा है कि आप ये कह रहे हो कि हर इंसान जो रेडियो केजे लोकल पर आके बैठता है उनको गाना गाना आना चाहिए, क्योंकि
1: अभी आप हमें कल रात को बोल रहे थे कि आपको गाना गाना है.
0: हमें क्यों गाना गाना है?
1: आप गाना गा रही थी कल ना, जो चीख चीख के गा रही थी कल रात को.
0: क्या गा रहे थे हम?
1: ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल.
0: वो तो यार, आई शुड से शाउट आउट टू डीजे सैम एज वेल, डीजे बॉटनिक्स, कल आपने काफी अच्छा काम किया, एंड साथ ही साथ डीजे गिडियन जो कल थे गरबा रोल्स में. सो बोथ आर डीजेस, बिग शाउट आउट टू यू गाइस फॉर डूइंग एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब. एंड डीजे बॉटनिक्स के बारे में ये कहना चाहते, कल हिज नंबर्स वर प्रिटी गुड.
1: गुड सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक. आई थिंक यही होता है जब ऐसे जगह पर हम आते हैं जहां पर मिक्स क्राउड होता है. व्हेन आई से मिक्स क्राउड, हमारे पास कल यंगस्टर्स थे, व्हेन यंगस्टर्स टीनेजर्स, यू नो जस्ट अबाउट इन द अर्ली 20s, इसके साथ साथ एल्डरली थे, यू नो मिड 40s मिड 50s, इसके साथ साथ प्लस ओवर 60s. सो एवरीबॉडी एंजॉयड. जाहिद उस्मान जी अस्सलाम वालेकुम, बबीता आचार्य जी हेलो बबीता जी नमस्कारम, और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े. चले अगले जो गीत में हम आप सभी को इसमें याद करना चाहते, काफी दिनों बाद दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बैक इन द डेज, जस्ट बिकॉज इट वाज संग बाय नन अदर देन माय फेवरेट singer of all time, Kumar Shanu. You're listening to Radio KJ Local only on
0: Plains Media 96.9.